चेहरा बदल जाते और उस संचारी का कभी काल भी कोई है, राग भी कोई है, पर अंतरा बदलिया हुई।

मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोकां वास्ते जिवें कबीर जी दा वचन सी जिहे मरणे सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत तां पता नहीं कदों आउणी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिहे मरणे सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिहदा नां लैणा चंगा ही समझा जांदा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत दी गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगदी जीण दी गल कर मौत दी गल ना कर जिस नूं भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ ले के दिता सी जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने शक हो सकते ने शंके रह सकते ने गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं परिवार वाला बन सकेगा के नहीं कारोबार चल सकेगा के नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही इह सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओह झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो झूठ दी करो मरण दी गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तों बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा जो सच है जो वापरना है इस तों बंदा डरदा है कहिंदा इहदी गल ना करो जे मरणे सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरणे ते जग डरे मेरा मन आनंद मरणे ही ते पाईए पूर्ण परमानंद भावें मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना उह हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना होवे आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तां उह मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओ मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जाती लेकिन एक मौत होर भी वह है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जाती हौं दी मौत हो जाती ते बंदा इस मौत तों भी डरदा जिस नूं इह मरना आ गया ना उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया जिन्हों धर्म के मार्ग से जीना आ गया वह शरीर की मौत बड़ी छोटी समझदा है बड़ी तुच्छ समझदा है जिन्हों चज नाल जीना आ गया है सच्ची गल तो यह है कि चज नाल मरना भी उन्होंने आया कबीर जी कहते हैं सो मरना गुर शब्द प्रकाशया गुरु के शब्द द्वारा मैनू मरण का पता लग गया अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण से चित करता है हों करके मरण में चित करता है उंज भी जे मौत आवे जी आया मोए मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जाने मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नूं रब दा पता नहीं राम दा पता नहीं ईश्वर दा पता नहीं धर्म दा पता नहीं
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां ने, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालण दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हाल च वापरन वाली चीज है, मनुख इहदे बारे बड़ा ही अवेसला है, उहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जोखिन में तिल बिक सब करे बिनासा।

गवास मेरे मने हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरसा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरसा बहुत कढ़ासा अपनी बिरसा कहो और अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए

ब्राह्मण मूर्त ऊपर मोहया, ब्राह्मण मूर्त ऊपर मोहया, मस्जिद मुल्ला वस्त्र

करना तो ठीक है, किसे प्यार वाले मन ने अटैक की थी। नारद जी तुसी तानू जो मेरे भगवान दे दर्शन नु जा रहे हो, नारद तुसी तानू जिन्हां नू मेरे भगवान दे दर्शन मिलनगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू कह रहे है। नारद ने कहा क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहुंदा है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है।

आप अदिति जी आस्था वाला जीवन बड़ा स्वादला हों खुशरी वाले आस्था वाले जीवन में आस है ना इंतजार है ना ये बड़ा सुख है ये कोई अगम्मी रस है साईं की याद मालिक की याद यादा भी पूरी हो जाए पर प्यारी सत्संग याद विच भी रहना यह भी एक अवस्था है मालिक के दर्शनों की प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तो भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तहके बल पर गया इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री अकाल।

जिनी तुदनू तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्होंने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दिया बख्शा प्राप्त करने वाले सर्वत्माई पाई त्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

सब तो बड़ा धर्म साईं दी बंदगी है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल ते सब तो निर्मल करम। जिस वेले तू हरि दा नाम जपेगा तेरा मन निर्मल होगा, मन निर्मल होएगा फिर तेरे कर्म भी निर्मल होंगे। निर्मल कर्म करने वाला सदा सुखी है, पाप करने वाला दुखी है। पापी कर्म कमांदे कर दे आए, इस वास्ते सिमरन कर। जी मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। बाबा जी वचन करते सन मन ना लगता,

मांगो राम से एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम। ओ लॉर्ड, पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, असीं अपने रोजाना दे रहरास दे पाठ दे विच इस शब्द से पढ़ते हैं, पर जो इस दे विच विचार पेश किया गया है उस ते असीं कदे रुकते नहीं हैं। इस करके असीं ना रुकन करके जो इस पंक्ति दे विच साडी एक दर्दनाक हालत का जिक्र किया गया है उसनु असीं अवॉयड कर जाने। आप जानते हो कि अगर कोई चीज गल जाए तो उस दे विच नंबर एक ते कीड़े मकौड़े पैदा हो जाते हैं, वो बीमारियां का घर बन जाते हैं, और दूसरा उस दे विचों दुर्गंधी आती है, उस दे नजदीक होना भी मुश्किल हो जाता है गली हुई चीज के। और गलियां हुई चीजों असीं बाहर फेंक देने, बाहर सुट देने, और असीं कभी ये सोचा है अपने मुतलक कि असीं भी गल गए हैं? ऐसा असीं नहीं सोचा। अगर असीं ऐसा सोचिए कि असीं अगर साडे शरीर का कोई अंग गल जाए तो असीं डॉक्टर दे पास जाने, उस उत्ते मरहम पट्टी कराने, उसनू टक के रखते हैं, क्योंकि गलिया होया अंग खुद नू भी देखने अच्छा नहीं लगता, दूसरों नू भी देखने अच्छा नहीं लगता, उसनू साफ रखते हैं कि उसके कीड़े मकौड़े न पै जाए। और गलिया होया अंग जदों कभी बिल्कुल ना ठीक हो सके फिर उसनू कट देना पैंदा, खत्म हो जाता, क्योंकि वो गलिया होया अंग एक पूरे दे पूरे शरीर में भी गाल सकता है, खत्म कर सकता है। तो महाराज जी ने फिर लफ्ज जो वर्त्या है उस तो यह सिद्ध हुंदा है गुरु साहब साडे जीवन दे प्रति आख रहे हैं, इस काया दे प्रति आख रहे हैं, इस शरीर के प्रति आख रहे हैं कि जो तमाम गुण सत नुक्ते जो खूबसूरतियां जो महिमा जो ब्यूटी इस काया दी आप जी ने पिछले कीर्तन च सुनी है सत नुक्ते कि यह दुर्लभ है, ये रब का मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु तक पहुंचने के वास्ते एक घोड़ी है, तमाम सारिया जूना दे विचों ये श्रेष्ठ है, उत्तम है। और अखीर च महाराज जी ने इसनू बहुत ही उच्चा दर्जा दिंदिया होया ये आख्या कि ये एक सरोवर है, सरोवर, और सरोवर दे विच इशनान कीतियां सब बीमारियां हट जाया कर दियां, सरोवर दे विच कमल फुल हुंदे हैं, खिले हुंदे हैं, शीतलताई हुंदी। गुरु बाबा जी आखदे हन अकाल पुरख वाहिगुरु
ओ परम ज्योत परम आत्मा जो साड़ी सोल है उस दे नालों दूर जान करके उस दे नालों विथ पैन करके उस दा ध्यान साडे ध्यान चो निकल जान करके उस दे नालों टुटन करके उसनू भुलन करके कहिंदे की होया है इस काया दे सारे ही जितने गुण सन ओ गल गए सारे गुण गल गए हुण असीं गले हुए लोग सारी कम्युनिटी गले हुए लोग सारी ह्यूमन सोसाइटी गली पई और दसो इसका सर्वाइवल कित्थे होएगा किस तरह होएगा ये शब्द सिर्फ कोई अहमियत पढ़ देने वास्ते ही थोड़ो हन नितनेम कर लिया तो फर्ज पूरा हो गया इसनों तो बहुत ध्यान दे नाल दिखना है महाराज जी तो बहुत ही खास बहुत ही जरूरी गल कर रहे हैं जिस तरह किसी नु कैंसर होया हो अगर उसनों कोई दस दे कि तेनु कैंसर होया है लिख के दे दे कि तेनु कैंसर होया है तो उसमें रोज पढ़ी जाए रोजाना उसका पाठ कर ले उस लिखे हुए पर्चे का कि मैनु कैंसर होया कैंसर होया कैंसर होया ऐसा कभी हो सकता एक दफा पता लगन की गल शक पैण की भी देर है कि इंसान फौरन जाके टेस्ट करवाएगा और फिर उसको रिमूव करवाएगा सर्जरी कराएगा पर गुरु बाबा जी कहते हैं इतना भयानक कैंसर के पूरे दे पूरे गल गए हो अंदरों और असि फिर उसको रोज पढ़ देने हैं और बहुत कंफर्टेबली रही जाने हैं जैसा कि सानू अपने गल जान की कोई तकलीफ ही नहीं होती असी गले पे हाँ ना असी अपने आप में दुर्लभ समझते हाँ ना असी मंदिर बन सके ना असी सरोवर बन सके ना असी तमाम सृष्टि दे विच्चों उत्तम ही बन सके सगों इस तमाम रचना नू खराब करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है इस प्लैनेट नू डैमेज करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है इनवायरमेंट नू डैमेज करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है तो असी उत्तम नहीं बने पशु पंछी परिंदे कीड़े मकौड़े दे आर नॉट डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट ओनली ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस टू द होल एनवायरमेंट उत्तम असी किवें हो महाराज जी ने यह आख्या इंसान तेरे नालों सूर चंगा है कबीर जी ने आख्या साकत ते सूकर भला साकत इंसान नालों सूकर जो है वो अच्छा है चंगा है राखे अच्छा गांव क्योंकि गांव नूं साफ सुथरा रखता है गांव की सफाई करती है साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गांव पशु नूं चंगा आख्या है पशु मिले चंगियाईयां खड़ खावे अमृत दे कहते पशु चंगा है घा खांदा है खड़ खांदा है और अमृत वर्गा दुध दिंदा है नाम विहूने आदमी रिग जीवन कर्म करे तो गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द जो किसी रोज ही पढ़ते हैं पर इस दे विच्चों अपनी गली सड़ी तस्वीर नू असी नहीं देखते दे, पढ़ के अगान लंघ जाने हैं गुरु बाबा जी ने इस शब्द च यह आख्या है कि ह्यूमन फॉर्म के जितने भी गुण सन जिस तरह गुलाब का गुण की है कि उस दे विचों सुगंधी आती है उस दे विचों कोमलता नजर आती है
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਗਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ

अगर इसनों मंदिर नहीं बनाया तो जो इस दे विच्चों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़दियां डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखते हैं

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहिंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुक्त तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है। कहिंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख नु ए भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन हो, कल दी रात तेरी आखिरी रात हो, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल हो, पर ए आशामा बनती है बड़िया लंबिया लंबिया। कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सैटल पता नहीं कदों होणगे। सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखते हैं ये मूर्ख क्योंकि इसने अपनियां गलत आदतां बना लईयां हन, एडिक्शंस बना लईयां हन, सुभा बना लए हन, अते उन्हां चीजां नूं वरतदी है जिहड़ियां चीजां इस नूं कमजोर कर दियां हन। तो कहिंदे ए मूर्ख भी है,

जे तेरा शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनिया, अगर इसनू असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनू रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया, तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनू कोई शेयर नहीं कर सकता, वह दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। यह दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच बहुत ही चोट वाली गल करते हैं। कहते हैं ये वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। आखते हैं पंक्ति दे

सगल शरीर आवत समकाम, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनने दे योग हुंदी है, असी पहन लैने हां। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नूं उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है? कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसी ना किसी काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी काम आती। लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जिहड़ा किसी काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख का शरीर जिहड़ा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर वह नहीं किया तो कहते निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इस दे सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनु रिफ्लैक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इस दे नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजिही, कि मेरी ही जिंदगी अजिही ते नहीं। ए जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसके त्रिकता नहीं है, त्रिकारता नहीं है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐसे तो नहीं पचा बैठा हूं, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नूं इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठाव।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं, सुनो किमें गले हैं। कहते हैं

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माणा ने माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है सो जानू काचा।

तो तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सेना तू मेरा पिता तू है मेरा माता।

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिन दूजा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना सब प्रभु जी पास। सब किचों किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

करबाहिर तेरा प्रवासा, तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन का प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ नाथ हरतन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी

मदिन होत साधु तुरे आवण जानु रे थित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धिन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानक सब बनिहार हर गुरु।

0: अल्लाह यार योगी।
1: ख्वाहिश है तुम्हें तेज चलाते हुए देखें,
0: ये दिहाड़ा थोड़े दिन हो लंघे वड़े साहब जाने चमकौर दी कड़ी।

प्रकार के आकार नाना प्रकार श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। जोग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम सिखादिक कथिक नेत नेत कर पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान सिख

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न

के पलीराज पूल कहूं पवर होए के भली पात पूल कहूं फूल होए के भली राज पूल कहूं भवर होए के भली पात कहूं अश्व होए के बह

खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

मान मैं तू मेरो खालसा से ही, खालसा मेरो स्वार्थ से ही। आ खालसा मेरो स्वार्थ से ही।

जेवा एक पार ना लेही शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध या मैं रंच न मिथ्या पाखी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी एक छिन पर भी ये मैं झूठ नहीं कह रहा सौंख आके कहना या मैं

गुरु कल की दरपातशाह ने बख्शिश की थी, जेड़ा खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस खाके दे विच गुरु अंगद देव पातशाह ने भी रंग भरिया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी सेवा का रंग भरिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी शहादत का रंग भरिया, नौ पातशाहियां ने इस खाके दे विच सेवा सिमरन प्यार भावना भर दिती। उस सिखी दे रूप नू गुरु कलगीधर पातशाह ने एक फ्रेम लगा के संपूर्ण कर दिता, सिख का रूप बनाया। क्या सिखा तैनू गुरु कलगीधर पातशाह ने सुंदर दस्तार भी बख्शिश की थी, सिखी दी शान बख्शिश की थी, जिथे पंजे कक्के धारण बख्शिश किते, रहनी बहनी विच रहन दी प्रेरणा कीती, उथे तेनू साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार सजाउण वास्ते भी है गुरु के सिखा। जदो दस्तार सजावेंगा, दस्तार सजा के जदो तू शीशे दे सामने खलोता होवेंगा, ते मेरे दीदार होवणगे। कितनी बख्शिश कीती, पर अज दा सिख उस मालिक नूं भी भुला बैठा, उहदे बचन भुला बैठा। इथों तक दस्तार दी जगह टोपी सिर ते पा बैठा, इथों तक कि उहदे बचन भुला के कन्न

चरण टिकाए ओ धरती पूज नीक हो गई, ओ धरती वैकुंठ धाम हो गई। उस धरती दी चरण धूड़ी जिसने भी मस्तक ते ला ली, उदा लोक परलोक सौर गया। संसार नूं उतारदे होए धन गुरु नानक पातशाह जदों मणिकरण दी धरती ते पहुंचे, मर्दाने ने बेनती कीती गरीब नवाज, जे आग्या होवे तां कोई अनुपान कर आवा, क्योंकि आप तां पवन आहारी हो पर मैनू तां भुख लगदी है। मर्दानिया तेरी भुख ने तां अनेकां दा उधार कीता है, तैनू भुख लगी तां सज्जन ठग दा उधार होया, तैनू भुख लगी तां कौडे राक्षस दा उधार होया, तैनू भुख लगी तां नूर शाह जो जादूगर लड़की सी उस दा उधार होया। तेरी भुख ने तां पता नहीं कितनियां दा पता कीता है। मर्दानिया जा अनुपान कर आ। मर्दाना जदों इस ग्राम विच गया, ग्राम वालिया ने रस्त दे दिती ते वापस आ गया। महाराज प्रसादा तो नहीं छकिया, पिंड वालिया ने रस्त दिती है ता धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, ओ सामने पत्थर चुक ते वेख निरंकार दे फिर रंग। मर्दाने ने जदों पत्थर चुकिया ता एक गर्म जल दा कुंट निकलिया, आख्या इस अमृत जल विच प्रसादे कढ़ के पा दे। मर्दाने ने सत बचन करके जदों पाए ता जितने प्रसादे पाए सारे दे सारे डुब गए। महाराज ये ता सारा अन्न इसे तरह, सारी रस्त इसे तरह डुब जावेगी। ता धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे, मर्दानिया पहला प्रसादा परमेश्वर दे नमित कड़ी।